हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलो मंग रहे हैं। ते मंगिया उथो ही जांदा है जिथो दात मिलती हो, जिथो मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलो मंग रहे हैं। पर गल कमाल दी है, मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दीयां मंगां। पर हे परमात्मा, तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथों जो तू सब दीयां मंगां कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है, ते साहब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देण तो इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगना किवें है ते मंगना की है।

ऐसा नहीं कि मंगना माड़ है। हां मंगना चाहिए पर मंगना किवें है ते मंगना की। हुण साहब गिनती पहले उन्हां दी दस देने कि जो मंग रहे ने, कोई मान मंग रहे, मान दा भाव है इज्जत रिस्पैक्ट, तान मांगो, तान दा भाव है जोर विल पावर ताकत, धन लक्ष्मी सुत दे, कोई धन मंग रहे, मनी माया मंग रहे, सुत कहिंदे ने कोई पुत्र मंग रहे, लक्ष्मी कहिंदे ने कोई इस्त्री मंग रहे। हे परमात्मा जिन्ने मंगते उन्नियां उन्हां दियां मंगां,

सो के सो कुकिए ना सोइए आ सार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार कड़ी ते पुकार सुनेगा ना बस मंगता मंगी जाए मंग बार बार दोहराई जाए किवे मंगे बबीहे दी तरह उस चातक दी नहीं आई जिड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा मंगी जांदा ना दिन विंदा ना रात विंदा वो पुकारा करी जांदा बबीहा बोल रहा सी किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना कहना एक बूंद चाहिए एक बूंद ली बोल रही मंगती का पहला गुण है जी कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है नदियां नाले ने सागर हन तालाब हन वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले कहने नहीं ए पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते मैनू तो एक बूंद चाहिए एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं ख्याल करियो जी एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले कहना जा जाके सौ आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे क्यों नींद हराम कर रहे बबीहा नहीं मुड़िया जी बबीहा बोलता जा रहे आखिर की होया वो एक लिव नाल बोल रहा सी एक कोलो मंग रहा सी बाणी विच फैसला है जी

अमृत दी एक बगीची है जो उस पूर्ण परमात्मा ने बनाई है। जिवें एक पौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिवें कोई पंछी अपने खंभां नाल हवा नूं उलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें ओ गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाव नूं अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंजल विच हुलारा दे के प्रभु चरणां विच उड़ारी लांदा है। उस गुरमुख दी उस अडोल

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखा का नाश होंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देन वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नू जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारे विच परमेश्वर दा नूर है ओ दी

जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाणगे ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदिआं दुख भुल जांदे ने, हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे तो दुख कलेश

क्योंकि वाणी गुरु देंदा है। इसे करके सतगुरा ने इंसान नु कहा किसे बेतारी दे पिछे ना लगो, बाणी नाल जुड़ो, क्योंकि बाणी परमेश्वर दी है। जो परमेश्वर कहंदे गुरु ओहो ही उपदेश करदे, ते गुरु कहंदे तुसी मेनू परमेश्वर ना कहो, मैं भी परमेश्वर दा भेजिया आया, मैं ते परमेश्वर दा सुनिया तुहानू दे।

कितना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे तावी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान ने। कई बार आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे हुंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा हुंदा है गुस्से दे नाल, उहदे मन नूं चैन नहीं हुंदा। रोशनी विच इंसान बैठा भी अंधेरे विच हुंदा है, अंधेरा केड़ा अज्ञान दा। अज्ञान की है? अज्ञान यह है कि दूसरे का हक मैं खावा, अपने सुख वास्ते दूसरे का हक खाना, दूसरे नु दुख देना, यह है अज्ञान। ते ज्ञान की है? ज्ञान यह है कि भाई सारे विच परमेश्वर है, सारे विच खुदा है, वाहिगुरु है, जे सारे विच वो है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां

पानी टिक्या रहेगा, जे पानी नो धरती ते डोलो पानी खिलर जाएगा। इसे तरह सहब जी फरमांदे हन, कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे। जिवें पानी घड़े विच टिक जांदा है, इसे तरह मन गुरु दे ज्ञान दे नाल टिक जांदा है, और ज्ञान गुरु तो बगैर नहीं होंदा।

जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू लै, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन दे। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। भावे उन्हें माया तेनू बहुती मैनू थोड़ी दिती, पर गए थे आप कट्टे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तो झगड़ा हो गया, और झगड़ा होंदा भी अक्सर देखते हैं, देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्होंने कुछ सेवा का चा है, बहुत घट होंगे सेवा वाले, बहुते थे अपने स्वार्थ वास्ते ये नारा लगाते हैं असा सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं होंगी, सेवा ते मन होंगी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा है ने भगत, पर माया पिछे लड़ पे। ये लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच किया, अगला जन्म तेरा तंदुए का होगा, पानी विच रह के पानी दे विच रहन वाले जीवां नू खा के अपनी लालच वाली ये बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप किया, उसनों भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा ठीक है भरा, जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रहेगी, तेरी भी मौत होगी, तू जंगल का मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच भटकदा भटकदा एक दिन उसे जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा, मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनूं गोते दे दे के मारांगा, और इस गल का बदला लवांगा कि तू मैनूं श्राप दित्ता है। ने भगत पर माया विच आ गई, और माया ने दोनों नूं भगती दे थां तों थले सुट दिता। समा आया, दोनों दी मौत होई, वड्डा मस्ताथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नूं गुरबाणी विच भी साहब जी बयान करदे हन, राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कढ़ निस्तारे, गज पत पार उतारे। अनेकां शब्दां विच इस शाखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक भरा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और वो समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने। ये जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुम दे आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी, ए ज्यों ज्यों अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिले, और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया, और अगे एदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनी तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले, और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू किया। पहला ते हाथी ने परवाह ना की, पानी पी के वापस मुड़न लगा, पिछे नहीं मुड़िया जांदा, ते हाथी समझ गया मैनू कोई पकड़न वाला तगड़ा जीव है। इसने जोर लाया, कुछ पिछा आया, पर फिर तंदुए का जोर चलिया, ते हाथी

विष्णु भगवान ने एना दे बंधन कटे तंदुए नु भी मुक्त किया, इस हाथी नु भी मुक्त किया, ते दोनों प्रा होता दे ब्रह्मा। पूरे गुरु की प्राप्ति नहीं सी, भक्ति करते सन पर माया का लालच मन विच हटिया नहीं सी, इसे वास्ते इन्हां नु इतना दुख भोगना पिया। और जब भगवान मिलिया तो फिर मुक्ति नु प्राप्त होया। इसे शब्द दे विच धन गुरु रामदास जी जिथे इन्हां दोनों भरावां का जिक्र करते ने कि माया पिछे सराफ दे के दोनों ने जोड़ना पाईया, दुख भोगया पर फिर सिमरन कीता ते भगवान ने इन्हां दा पार उतारा कीता। इस शब्द विच सतगुरु जी फरमांदे हन, बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे है। भाई इन्हां कथा कहानियां नूं सुन, गुरु दी बाणी ये कथा कहानियां तेनूं दस रही है, इन्हां तूं सिख्या लै। झगड़ना फिर माया पिछे झगड़ा, पर माया बड़ी मिठी है। साहिब जी फरमांदे ने, पापा बाजों होवे नहीं मोया साथ ना जाई। पापा तो बगैर माया बहुती कट्टी नहीं होंदी, ते जद इंसान मरदा है ते ए नाल भी नहीं जांदा। सतगुरु जी फरमा रहे ने, सुन ए बाण, मन विच प्यार रख, जिन्नी भज नठ माया वास्ते करदा है, अगर सिमरन करें ते सिमरन सदका तेरी कमाई विच बरकत पवेगी। ए माया ते कुछ भी नहीं, सिमरन करेगा ते परमेश्वर दी जोत तेरे अंदर जग जाएगी, ओदे नाम दा प्रकाश हो जाएगा, ते फिर तू जिधर भी देखेगा तेनू परमेश्वर नजर आवेगा। इन्हां भगतां दी तरह पर एक बारी तू भी कह उठेगा, ऐ भाई जानी जानी रे राजा राम की कहानी। मैं भी परमेश्वर दी कहानी नू जान लिया है कि इस संसार

अर्जन देव जी का कातिल दरअसल जहांगीर ही सी, पर जहांगीर तो इलावा मुर्तजा खां ते चंदू दा भी हाथ सी। चंदू बादशाह जहांगीर दा शाही दीवान सी। जदों चंदू दी धी मुटियार होई ता उसने अपनी धी वास्ते चंगा वर्कर लभन लई एक पांदे ते एक नाई नू जो कुछ समझा के तोरिया है उन्हां बोलां नू ढाडी जथा हे क्यों दसदा है।

गुरु जी दी तारीफ दी गल सुन के चंदू दीवान खुश होने दी बजाए गुस्से विच लोहा लाखा हो गया। माया तारी अत अन्ना बोला शब्द नाल सुने बहरोल कचोला दे महवाक अनुसार चंदू दीवान कहन लगा ओ किथे मैं शाही दीवान ते किथे अर्जन देव एक फकीर किथे राजसी शक्तियां ते किथे साधां दा डेरा ओ तुसी चुबारे दी इट मोरी नू लाए हो। चंदू दीवान गुस्से विच लोहा लाखा होया कहन लगा भावे तुसी मेरे मुताबक चोन ठीक नहीं कीती पर फिर भी मैं तुहाडा मान नहीं तोड़दा जाओ जाके सगन पा आओ। ए सारियां गल्लां दिल्ली दियां सिख संगतां ने सुन लिया उन्हां दा मन बड़ा परेशान होया क्योंकि सच्चा सिख कदे भी अपने गुरु दी निंदिया नहीं सुन सकदा। गुर की निंदा सुने ना कान कानो घूर के पिछा हटांदा ए जे तू प्यार नाल नहीं बिठाउण जोगा हंजू वेख के कास तो हसदा ए जे तू रोंदिया नू नहीं वरौन जोगा कानो दुख दे दिला नू दुखांदा ए जे तू जख्मा ते मलम नहीं लौन जोगा कानो बंदिया कूड़ विहासदा ए जे तू नेकियां नहीं कमौन जोगा। दिल्ली दियां सिख संगतां ने गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाम एक चिट्ठी लिख के हे क्यों भेजी आवे

सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणी है। सतगुर की रीसे होर कच्चू बिच्चू बोल दे से कूड़िया।

सिर्फ मिठियां ही स्वीट चीजां ही नहीं, और बहुत सारी चीजां जो प्यारियां लगदियां स्वादलियां लगदियां, कहिंदे मिठियां समझ के उन्हां नूं खाया पर कौड़ा उपजा साग, पर उन्हां दा रिजल्ट जो है अखीर दे विच जाके वो स्वाद कौड़ा निकले, उस दे विचों कड़त्तन निकली, शरीर ने ही वो बीजिया पर शरीर में ही वो भोगना पै गया। भोगंग त रोगंग, शरीर ने ही भोगां दी मौज माणी पर शरीर नूं हुण रोग भी सहने पैने हैं। भोगंग त रोगंग, जितने ज्यादा भोग उतने ज्यादा रोग, जितने ज्यादा डिशेज उतने ज्यादा डिजीज। गुरु बाबा जी कहते हैं ये तन मेरा कोई सफला करता है, वरना इस तन दे नाल मैं रोग अते दुख अते पेन ही ग्रो करता हां, वो खुद मैनू खानी पैंदी है, उदो बड़ी तकलीफ हुंदी है। महाराज जी एक जगह होर बाणी चाकदे हन, कहते हैं जे सौ वरिया मिठा खाए, कहते हैं

जितने भी शरीर दे रस हन उतने ही दुख लगते। इस करके महाराज जी ने एक पंक्ति दे विच ग्रिस्तियां नू खास करके ग्रिस्तियां नू इस समझाया है कि जे तुसी ग्रिस्ती हो तो इसका अर्थ ए नहीं कि तुहानू अकाल पुरख वाहिगुरु ने जां सतगुरु ने एग्जेम्पशन दे दित्ती है कि हुण तुसी जो मर्जी खाओ पियो भोगो रस माणो। नो, तुहानू भी योगियां ऋषियां मुनियां वाली ही साधना तपस्या करनी है भावें तुसी ग्रिस्ती हो, क्योंकि असीं कई दफा सोच लैंदे हां ना कि असीं तां ग्रिस्ती लोग हाँ, असीं कोई साधु संत थोड़ो, अपने आप नूं आप ही एक्सक्यूज कर लैंदे हां कि साडी सोशल लाइफ भी है, असीं ग्रिस्ती हां। हुण गुरु साहिब ग्रिस्ती किस नूं कहिंदे हन इह नहीं असीं सुणिया, इह नहीं असीं सुणिया, असीं सिर्फ इन्ना ही सुणिया कि गुरु बाबा नानक देव जी महाराज ने ग्रिस्त धर्म नूं बहुत उच्चा आख्या, ऐ सुणिया, ठीक है ना, कि गुरु नानक साहब महाराज ने ग्रिस्त धर्म नूं प्रवान किया, पर किस किस्म दे ग्रिस्त धर्म नूं प्रवान किया ए दसना भी मुश्किल है, इस नूं मनना भी बड़ा मुश्किल है, तो सानू शायद किसी ने दसिया भी ना हो। गुरु बाबा जी दसते हैं कि ए ग्रिस्ती, जे तू सोचे कि ग्रिस्ती होने के नाल तेनू एग्जेम्पशन मिल गई है कि तू हुण बॉडी दे लैवल दे उत्ते रह के सारे बॉडी दे रस जो टेस सन उन्हां नूं माणी जा, तेनू कोई तपस्या करन दी कंट्रोल करन दी अपने उत्ते कोई मास्टरी करन दी लोड़ नहीं है, क्योंकि चूं तू ग्रिस्ती है इस करके यू आर अलाउड, वो कहिंदे ऐसी गल नहीं। हुण पंक्ति सुनने वाली है बहुत प्यारी,

है गृहस्थ, इसके अर्थ सुनो। सो गृही जो निग्रह करे, कहते गृहस्थी वो है जो निग्रह करे। निग्रह का मतलब, निग्रह का मतलब है कि अपनिया इन्हें सेंसुअल प्लेजर्स के उत्ते अपनी मास्टरी अचीव करे, इन्हों का मास्टर बने, इन्हों उत्ते काबू पाए, इन्हों उत्ते कंट्रोल करन दा अभ्यास करे। बेशक आहिस्ता आहिस्ता करे, आहिस्ता आहिस्ता करे, पर एक दिन ऐसा उसके जीवन दे विच आए कि वो इन्हां इंद्रियां दे रसां दा गुलाम न रहे। क्योंकि जो इंद्रियां दे रसां दा ही गुलाम रह गया, वो शरीर दे ही तल ते रह गया, वो शरीर तो बॉडी तो अगा इवॉल्व नहीं होया। जो बॉडी तो अगा इवॉल्व नहीं होया, उसनूं दोबारा फिर बॉडी दे विच पाया जाएगा। वो फिर जन्म मरण दे विचों गेट चो मुक्त नहीं होया, दोबारा उसे ही गेट दे विचों फिर आ जाएगा। और यह भी पता नहीं किस किस्म की बॉडी च पाया जाएगा, यह भी कोई पता नहीं ना। जो शरीर दे लैवल ते अपनी लाइफ नू एंड करता है, दैट विल कम बैक इन टू द फॉर्म। तो महाराज जी आखते हैं सो गृही, ओ गृहस्थी है जेड़ा गृहस्थी हुंदिया होया, गृहस्थी विच रहिंदिया होया की प्रैक्टिस करे, अपनिया इन्हां इंद्रियां दे तमाम रसां नू मास्टर कर लै, कंट्रोल च कर लै, काबू च कर लै, ते इन्हां नू जित लै। सो गृही जो निग्रह करे। अगली गल, जप और तप। जप इज मेडिटेशन, नाम सिमरन। तप है अपने जीवन दियां, अपने बिहेवियर दियां तमाम जो जो लो नेचर दे जो साडे सुभाव हन, जितनी भी साडी लोअर नेचर है, पशुआं वाले सुभाव हन, अपने आचरण नू, अपने बिहेवियर नू, अपने लाइफ स्टाइल नू तब्दील करन दी तपस्या करे, तपस्या करे। तो नंबर एक, इंद्रियां उत्ते इन्हां दे रसां कसां उत्ते काबू पाउण दा अभ्यास करे, ए तप करे। दूसरा, अपने आचरण अपने कर्मां नू निर्मल बनाण दे वास्ते तपस्या करे, जप तप संजम, अते अपनी जिंदगी च संजम लियावे। संजम दा मतलब कि ओ अपनिया नीड्स नू कटावे, अपनिया नीड्स नू अननेसेसरी ना बधाई जाए। पदार्थां नू देख के मार्केट दे विच, बाजार दे विच जो कुछ भी एडवरटाइज किया जाता है, यह जरूरी नहीं है कि उसने खरीदना ही है। बहुत वाइजली अपनिया नीड्स नू समझे, अते अपनिया नीड्स नू वध तो वध सादगी दे विच, सिंपलिसिटी दे विच रखने की कोशिश करे। यह है मतलब संजम दा, कि लाइफ नू बहुत होवे बहुत ब्यूटीफुल, एलिगेंट, पर बड़ी सिंपल होवे, बहुत सिंपल होवे, और ऐसी होवे कि जिसनू मेंटेन करन दे वास्ते उसनू दिन रात भटकना ना पवे। क्योंकि कई दफा सानू अपने एक्सपेंसेस पूरे करनू ही, अपने बिल्स पूरे करनू ही सारा दिन रात सानू भटकना पैंदा है, जस्ट टू पे अवर बिल्स। पर असी उतने क्रिएट ही क्यों करिए? कबीर साहब ने आख्या है, सादा जीवन जियो। गृहस्थी वो है जिस दे जीवन दे विच, कहिंदे जिहड़ा गृहस्थी जीवन दे विच बैठा होया इन्हां चीजां उत्ते कम करदा है, अपनिया इंद्रियां नू कंट्रोल करदा है, इंद्रियां दे स्वादां दे उत्ते ओह फतेह पाउंदा है, अते अपने आचरण नू ओदी तपस्या करता है, अते अपनी जिंदगी च संजम लियांदा है। जप तप संजम भिख्या करे, इस गल दी वाहिगुरु तो भिख्या मंगदा है। पुन दान का करे शरीर, कहिंदे ओदा जिहड़ा शरीर है
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲਵੇ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਗ੍ਰਿਸਤੀ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਓ ਇਸ ਨੂੰ।

0: अत सवाले का मतलब अति खूबसूरत, हर काया बहुत खूबसूरत है, कोई ऐसा नहीं भी घट खूबसूरत है तो ज्यादा खूबसूरत, बदसूरत असी बना लेने वरना हर काया अपने आप यूनीक रब की कामणी। कहते हैं
1: काया कामण,
0: कामणी मैंने औरत,
1: अत सवालियो फिर वसे जिस नाले,
0: अते फिर जिस दे नाल रहिंदा है वो अपनी औरत दे नाल रहिंदा है, इस तो दूर नहीं जांदा, इस दे रोम रोम दे विच समाया है, उसनु अपनी औरत दे नाल इतना प्यार है, अपनी कामनी नाल इतना प्यार है, तो इस दे अंदर रहिंदा है, इस दे संग साथ रहिंदा है,

0: गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने आप भेजिया जा भाई मेरा सिख बैठा नेत्रां तो जल वहा रहा है ते उसनु लेके आ। ओ मेरे दर्शना लई तड़प रहा है मैं उसके दर्शना लई तड़प रही क्योंकि प्यार वालियां लई गुरु आप दर्शना लई तड़पदा है। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र सिमरन ताहे बारंग बार गुरु हेत। कोई गुरु दे पासे एक कदम रखदा है गुरु करोड़ गुना अगों लैण लई आ रहा है। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा आगे होई लेत। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र सिमरन ताहे बारंग बार गुरु हेत। कोई एक वेरी याद करदा है गुरु बारंग बार याद कर रहा है। गुरु ते सिख दी एक अंगी प्रीति नहीं है दो अंगी प्रीति है। ए मच्छी और पानी दी प्रीति नहीं पतंगे और दीवे दी प्रीति नहीं चंद और चकोर दी प्रीति नहीं ए एक अंगियां प्रीतां हैं। मच्छी तड़प रही है जल तो बार कदे जल नूं तरस नहीं आया कि अपनी छल वगा के नाल मिला लवां। पतंगा आपा वारन लई आया पर कदी दीवे ने उस ते तरस नहीं कीता बचाया नहीं कदे। सिख दी दो अंगी प्रीति है जे सिख अंदर प्यार है तां गुरु दे अंदर उस तों करोड़ां करोड़ां गुणा वध प्यार है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने सेवक नूं भेजिया जा वही मेरा सिख मेरे दर्शना लई तरस रहा है ते मैं भी ओदे दर्शना लई। गुरु के सिख ने वेख्या भाई सिख ध्यान विच जुड़िया होया है मैं इस दी बिरती किवें उखेड़ा। जदों नेत्र खोले तां इस सेवक ने आख्या भाई गुरु के लाल तू वड्या पागा वाला है तैनू सतगुरां आप याद कीता तेरे ते बख्शिश होई है चल सतगुरु आप कृपा करके तैन बुला रहे हैं। कोट सुख आनंद राज पाए मुख ते निमुख बुलाई करोड़ां राजां दे सुख कठे कर दईए ना इना तो भी करोड़ गुणा वध ओदों खुशी प्राप्त होंदी है जदों गुरु आप सेवक नूं सद लवे। सात संगत बोलो श्री
1: वाहिगुरु वाहिगुरु।
0: जां गुरु का सिख आया अगे चौपदार ने रोक दिता ते सेवादार कहिंदा है क्यों भाई किदे हुक्म नाल रोक रहे हैं। आखे चेतों मसंद ने हुक्म कीता है भाई ये सिख नूं अंदर नहीं बढ़न देना। आख्या फिर मैं उदे मालक दे हुक्म नाल इस नूं ले आया जिहड़ा चेतों दा मालक है ना गुरु गोबिंद सिंह उदा हुक्म है कि मेरे पास आवे। तां चौकदार ने नमस्कार कीती अंदर भेजिया ए गुरु का सिख गुरु दे चरणां ते शीश रख के नेत्रां दे जल नाल हजूर दे चरण धो दिते गुरु प्यार दे रहे। सिखा तेरा जीवन सफल है तेरा मस्तक परवान है तेरा संसार ते आया सफल हो गया। सिखा मेरे लिए की लियाए गुरु ने पूछा वी मेरे लिए की लियाए। गरीब निवाज असी तां तेरा दिता खांदे हां तेरा दिता पहन दे हां जो तू कराउंदा सो कर दे हां। असी कौन हां जो कुछ दे सकिए पर जो भी तू तिल फुल बख्शिया ओदे विचों दसवंध भी भेजिया सी ते एक जड़ाऊ सुचे मोतियां दे जड़ाऊ कंगन भी भेजे सन चूड़ा भेजिया सी बड़ा सुंदर। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने सिख नूं भेजिया भाई जा खजाने चो पता करके आ भाई सिख दा दसवंध पहुंचया कि नहीं पहुंचया। तां सिख वापस आया कहन लगा महाराज एदा दसवंध दी माया तां पहुंच गई है पर जड़ाऊ चूड़ा नहीं पहुंचया। बुलाओ चेतों मसंद नूं ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਦੂਰ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੇਤੋਂ ਆ ਬਾਈ, ਜੇ ਚੂੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਵੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੱਖ ਲਈ। ਚੇਤੋਂ ਮਸੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੂੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੇਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਖਾ ਤਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ, ਜਾਓ ਚੇਤੋਂ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਪਰ ਚਬਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਜੜਾਊ ਚੂੜਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਿਆਓ। ਝੱਟ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਚੂੜਾ ਲਿਆਏ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਦਾ ਠਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਕੱਢਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪ ਪਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈਏ। ਇਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ

फिर लक्षण आशा जी दीवार लगा के कीर्तन समाप्ति उस उपरंत अरदास गुरु के हुक्म नामे ए मर्यादा उदास ने बेनती की सी भी अज की चाह सेवक वालों तो मैं की सेवा कर सकता हां तुहाडी जो तुसी प्यार दिता है और ये भी गुरु की प्रेरणा से तो उस संसार अज चाह का लंगर तैयार है और मैं तो इवें बेनती की कई प्रेमी कह लगे भाई जी साडा भी हिस्सा विच पा आखो श्री भाई कई प्रेमी ते नाल उन्होंने कहा भी साडा नाम ना लई ते असी भी जिन्हां जिन्हां ते गुरु ने मेहर की सेवका नाल हित किया है तो उन्होंने चाह का लंगर तैयार किया है तो हुण प्यारी सात संगत सारे प्यार नाल क्योंकि अज आसा दी वार का कीर्तन भी पूरा हो गया तो मैं चाहूंगा अखीरला छंद अज आसा राग विच आसा राग तो आओ अखीरला ये छंद है अज आसा जी दी वार दे कीर्तन दा भोग पै रहा है सर्व आसा पूर्णी आसा जी दी वार तो ये छंद आपां आसा राग विच लगाउंदे हां।

पवित्र बाणी इसे बाणी दी बरकत ने बुद्धू दी बुद्ध चमका दिती, इसे बाणी दी शक्ति ने पत्थरां चो नहर वगा दिती, इस बाणी बन्ने लाया सी मक्खन दे डुबदे बेड़े नू, इस तरनी लखा तारे ने गिण दसा केड़े केड़े नू, ए ख्वाश हमेशा रहंदी ए कोई गुरमुख नदरी पै जावे, ओ पड़े अगम्मी बाणी नू मेरे मन दी कालख।

जिन्होंने बाणी नू कुछ समझिया है, कीर्तन कर रहे सन इस तो पहला ते पढ़ रहे सन, धन धन गुरु जिन नाम अरातिया, आप तरिया जिनी डिठा तिना ले छड़ाए, सवाल की तै बाणी की है अजे तक समझ नहीं आई, बड़ी बार कीर्तन सुने बड़ी बार कीर्तन कीता पर अजे तक बाणी दा नहीं पता लगा कि बाणी की है। हुण किहदे कोल पुछिए बाणी की है, ते सात संगत कई कई गुरसिख कई बीबियां जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पाठ कर दिया ने, ते जदों पाठ करन तों बाद जितने सफे हो जान कई लोग कागजां दियां निशानियां रख देंदे ने, ते जिसने कदे प्रतख गुरु की देह समझिया होवे साडे साड़ी अख च कोई एक तीला चला जाए ते सानू सारी रात नींद नहीं आउंदी। एक बारी आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाहे। सवाल कीता ए बाणी की है, जिसनू बाणी दा पता है उसने कलम चुकी ते लिखना शुरू कीता। सानू एक सनेहा दिता बाणी पढ़न वाले हो ए बाणी की है, साडी नजर ते सिर्फ इथों तक पहुंची है कि ए अखर ने ए सफे ने जिन्हां नू असी वरके कहने हां, जिन्हां नू असी पत्रे कहने हां, जिन्हां नू असी कई वार होर सुचजी बोली विच अंग कहने हां। ते सात संगत आ वेखो, तन है इसकी कलम ते तन है ए लिखण वाला, कहण लगा ए अखर नहीं ए वरके नहीं, ते फिर की है। ते सात संगत अज तू ए प्रण कर लो, जो मैं कहण लगा अज तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब नू इसे तरह समझना है। जिसने कलम चुकी है ओ लिख रहा है, ओ कहंदा ए अखर नहीं ए वरके नहीं, ते जिदे सामने लिख रहा सी ओ कहन लगा फिर की है। ओ कहंदा जो मैं वेख्या ओ मैं लिख रहा, जो मैं वेख्या ए अखर नहीं ए वरके नहीं ए सीना ए गुरु नानक दा कमाल है।

शोभन पर भी है। सुंदरता का मान, जवानी का मान और अक्सर इस मान दे विच इंसान वो कम भी कर बैठता है जो नहीं करने चाहिए। पावत रली है जवानी दे मान विच, जोवन दे मान विच नचदा टपदा इंसान किसी की परवाह नहीं करता। इहदा ए मतलब नहीं कि सोहना रूप नहीं होना चाहिए या जवानी नहीं चाहिए। साहब जी कहते हैं जो सोहना रूप है

तू हाथी के सवार हो गए, गहने पा के कीमती बस्त्र पा के सिर ते सोने का छत्र चुला के तू आखे मैं बहुत खुश हो गया। तू भावे समझदार है

कुदरती गल है, रूप भी होवे फिर जवानी भी धन दौलत भी ते फिर कोई विरला ही मानुख होंदा है जेड़ा परमेश्वर का सिमरन करता है उसका शुक्र करता है। नहीं तो बहुत ही लोग जवानी सोना रूप तन दौलत विच पै के रब नूं ते भुल रहे ने, वो अपने आनू भी भुल जाते। एक बारी रसना पवित्र करो प्यार नाल आपू सदना श्री कितों तक इंसान भुल सकता है, कितों तक रब नूं ते लोग भुलते ही ने, अपनियां नूं भी भुल जांदे ने। रब नूं अपना इस वास्ते नहीं कहा क्योंकि आम लोग रब नूं बेगाने ही समझते ने, आखो सतनाम सी क्योंकि जे अपना समझन ते भुलण ना। एक मुसलमान मौलवी बच्चियां नूं पढ़ा रहा है ते कहिंदा है बच्चियो खुदा ओ परमात्मा हर जगह है ते बच्चे भी कहिंदे हन साहब ओ खुदा हर जगह है। मौलवी रोज पढ़ांदा है ते बच्चे रोज पढ़ते, रोज सुनदे आं सुनदे आं हुण इह गल याद हो गई एक खुदा सब जगह है हर जगह है। एक दिन मौलवी ने एवें बच्चियां नूं सवाल कर दिता, बच्चियों कोई ऐसी जगह है जिथे खुदा नहीं? बच्चे सारे चुप क्योंकि अज तक ते मौलवी साहब इहो ही पढ़ाते रहे ने कि खुदा हर पासे हर जगह। ते हुण किवें कहीए खुदा किस जगह नहीं? एक बेनती करा किसे नूं याद करिए ते उहदे नाल संबंध जुड़ जांदा। जे किसे नाल संबंध तोड़ना है तो उसनों भुला दो संबंध टुट जाता। कई बारी देखते हैं कोई बहुत दूर है दूसरे मुल्क बैठा है, असी उन्हों याद करते हैं तो याद सदका उहदे नाल संबंध बनिया रहे। ते कई बारी ये देखते हैं कि कुछ शहर विच रहते हैं

आप ही पाया, पर जेता भुल गए। लभदे फिरदिया डोट है सी, पर पता नहीं कितने रखे। सौ का नोट जेब विच है, पर चेता भुल गया ते संबंध टुट गया। अचानक जेब विच हाथ मारे है ते जेब विच नोट निकल आया, संबंध जुड़ गया नोट नाल, क्योंकि नोट लभ गया। हुण घर विच किन्नियां चीजां लिया लिया के रखते हैं, ते जद कदी घर खोलते हैं ते कई चीजा घरों ऐसिया निकलदिया ने जिन्हां नूं असीं भुला चुके हो, ते फिर कहने अच्छा इत्थे ते इह भी पिया सी, इत्थे ते इह भी पिया सी। संबंध जुड़ गया। इसे तरह रब नूं याद करांगे उहदे नाल संबंध जुड़िया रहेगा, उस नूं याद नहीं करांगे ते संबंध टुट जाएगा। हुण मौलवी कहिंदा बच्चे खुदा कित्थे ने, सारे चुप। पर एक बच्चा सब तों पिछे बैठा सी,

ता पिता ने किया बेटा ओत ज्योति जोत समा गई। पर उन्हां दी जगह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब जोता जगा रहे। ते पुत्र कहन लगा पिता जी मैं फिर आनंदपुर साहब जावां। ता पिता ने कहा बेटा धर्मशाला विच संग इकट्ठा हो रहा आनंदपुर साहब जाण वास्ते तू भी उन्हां दे नाल चले आ जा क्योंकि साथ होवे ते सफर

दिव्या बेटा इस और भैया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणा से रख के मेरे वालों मत्था टेकी 500 रुपया अपने वालों भेट करने वास्ते जेब च पाया धर्मशाला पहुंचे है अरदास करके ये सारिया संगत उजैन तो आनंदपुर साहब को तुर गए होने मन में सोचता जाता गुरु का दरबार कैसा हो गया क्योंकि उनकी बाणी में बड़ा आनंद है वो गुरु से समाधि ला के बैठा होगा मैं जाके बुलावांगा वो नेता भी नहीं बोलना क्योंकि साधुओं की संगत करता सी जो देखता सी उसी तरह गुरु साहबां बारे

मापती कुछ संगता बैठिया रही साहब जी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पूछ रहे तुसी कीर्तन सुने तुहानू कैसा रस आया। हुण जिहड़े भी रोज कीर्तन सुनते सन कहन लगे महाराज सुभा दा रस है क्योंकि साडा सुभा बन गया है रोज कीर्तन सुनना। कोई कहन लगा कन्ना दा रस है क्योंकि कन्ना दे नाल कीर्तन सुने। कोई कहिंदा जुबान दा रस है क्योंकि मूंह दे नाल कीर्तन कीता। साहब जी इस सहजधारी ने पुछते ने पर सिखा तू नहीं बोलता तेनू कैसा रस आया। और ये कहता है जे मैं आखा सुभा दा रस है पहला मैं कभी कीर्तन सुने। जे मैं आखा जुबान दा रस है मैं खादा कुछ नहीं। पर एक गल है ज्यो ज्यो कीर्तन सुने मन भटक गया नहीं मन दे विच ही टिक गया आपको सतनाम श्री वाह। कहन लगा महाराज ये सिदक ते संतोख दा रस है आपको सतनाम श्री वाह। पाणी सुन के मन विच संतोख और सिदक आ जाता। साहब जी कहन लगे सिखा निहार एक महीना सेवा की और एक दिन 100 रुपया पिता वाला और 500 अपने वालों गुरु साहबा को भेट करके मत्था टेकया ते नाले कहन लगा महाराज कुछ बख्शिश करो ताकि मैं हुण घर नूं जावां। कड़ा प्रसाद दिता कि सिखा ये अपने पिता को नहीं साडे वालों एक सर्वलोह का कड़ा दिता जिहड़ा कड़ा सी हाथ विच बने नाले वचन दिता कि सिखा इस कड़े का अदर

खुशी खुशी आनंदपुर साहब को घूरे, पर जिस तरह ही आनंदपुर साहब को बाहर आया ते सारा आनंद गुआच गया। आखो सतनाम श्री माया वाली फिरती फिर जाग गई। जिवें असी कई बार कीर्तन में बैठे होने ये बड़ा आनंद आता, जो गुरुद्वारे बाहर निकलते हैं तो यह आनंद भुल जाता है, और गल याद आ जाती। इसी तरह आनंदपुर साहब को निकले है तो सारा आनंद गवाच गया। कह लगा मना बहुत माड़ा गीत है, 600 रुपया तो रोड़ के आ गया, एकड़ा प्रसाद दिता है गुरु ने जेड़ा पिता घर रोज ही बनाता है, एकड़ा दिता है। कहते सन जो मंगेगा तेनों मिलेगा, इस कड़े की अपनी कीमत 4 आने नहीं, इन्हें मैनू 1000 रुपए कितों दे दे रहे। आपको सतनाम सिर हुआ उदास हो गया ते गुरु की निंदा करता होया आनंद।

एक महीना सेवा भी की थी। 600 रुपया मैं गुरु नु भेटा किया, गुरु ने मैनु की दिता है एक कड़ा प्रसाद जेड़ा मेरा पिता का रोज बना है, एक कड़ा दिता है लोहे का नाले वचन दिता है। कहते सन जो मंगेगा तेनों मिलेगा, पर ध्यान सिंह तू दस इस

and they are an insource. ध्यान से उठे कारवाली को चला गए, देखने लगा पर ये लोग

किनारे पे है। सिख सिख का सत बण जो सिख सिख का पाओ, दगा सिख मम ना करे पानी अन्न पकाओ। सिख नु सिख नाल

उन्हें बड़ा खुश। पिता ने पूछिया, सुना फिर बेटा, गुरु के दर तू की लैके आए? जद के गुरु तू की लैके आए? ते मोरा दियां थैलियां अगे कर दी। जद इन्हें यह कहा, मैं गुरु का वचन ते कड़ा बेच के आए। ते पिता ताई मार के रूपे, क्योंकि गुरु नाल प्यार करता सी। मां नूं पता लगा, मां दा जिवें दिल बाड़ गया। रोंदी हुई मां कहती है, सुन कुकर्म ते मां दुखारी, सुत क्यों पा गुरबच विवहारी। ऐ सुत ऐ पुत्र, ऐडा वड़ा घोर पाप क्यों कीता, तू गुरु दा वचन क्यों बेचे? पिता ने समझाया, मां ने समझाया, पर हुण सामने सोने दियां मोहरां हन। आखो सतनाम श्री, हुण सिखिया चंगी नहीं।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद मानिया है। असी आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चे नाल गल बात पंजाबी विच करते हो ता आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है ता अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल ता समा उनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे ता गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ता इक पासे रिहा, ओ गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकदा है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असी ता उस दाते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उन्ताई है ता ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चा नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी ता सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा तुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही ता कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी ता अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया ता मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने होए हो ते अपनी बोली भी त्याग दित्ती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सजना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगों दाते दा अपना काम है, आप ही सहाय होएगा।

खोजत खोजत भई बैरागन प्रभ दर्शन को हो फिरो तसाई दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक साध संग मेरी जलन माई रजनी ने माई रंगड़ी ने किया फरीदा किसे मुर्शद की सेवा कर आखो श्री वाहेगुरु प्राप्ति मुर्शद तू हो गए कोई गुरु धारण कर बाबा जी वचन करते सन कितना जप तप क्यों ना कर लवे इंसान जितने तक गुरु वाला नहीं बनता वो जप तप सफल ही नहीं होंगे कितना कर तीजी पातशाह ने इक्की वेरी तीर्थ यात्रा की थी गंगा मैया दी स्नान की थी हर साल जाते सन और भी कर्मकांड दान पर करते सन पर बैरागी ने कह दिता सी ओ बाबा तो ता मेरा जन्म भ्रष्ट कर दिता है क्योंकि तू निगुरा है आंखों से वाहेगुरु मैं तेरे हथो पानी पी बैठा निगुरा गुरु दी गुरु मिल गया भाई सब कुछ ते असि गुरु वाले तां बनते हैं जे अमृत छक लीए तो आंखों से फिर अभी गुरु वाले बन जाते गुरु का बड़ा मान है जेदे गल च भाई पटा पाया वे कुत्ते दे ओनू कोई फिक्र नहीं जे पटा ना आवे ओनू फिक्र फिक्र जेड़ा गुरु वाला बन गया वो अपने मालिक वाला खसम वाला बन गया खसम का बड़ा मान निगोरे का भी कोई चीज लावारस कुत्तियां दे पर मार मुकाया जाता है उन्हों का जीवन किस काम है गुरु की वड्डी शक्ति गुरु का वड्डा आसरा गुरु का बड़ा मान है बुले शाह ने लिखिया ना मैं जब तक पूजा की ना मैं गंगा नहाया ना मैं पंज नमाजा पढ़िया ना मैं हज कराया बुले शाह मैं मुर्शद मिलया उस एवें चा बख्शाया एवें जिसे मेहर करते भाई मेरा स्वामी माई रंगड़ी ने कहा फरीद कोई गुरु धारण कर चला जा आज मेर ख्वाजा पीर पूरा गुरु है मुर्शद है उन्हों जाके धारण कर ख्वाजा पीर दे दर्शन कीते हे मालिक दे प्यारे हो करो कृपा मेरे उत्ते आवाज आई फरीद सेवा तू मेवा आखो श्री वाले फरीद रोज अमृत वेले पानी गर्म करके अपने पीर नु इनान करांदा है ख्वाजा पीर कितना समा हो गया 12 साल आजा अखीरला दिन है पीर ने सोचिया भी कसवटी लगाइए इम्तिहान लगी फरीद का पूरा अंदरों सेवा करदा कि बाहरों करदा इम्तिहान लिया अज बारिश हो रही जिथों अग बाल के पानी गर्म करदा सी अग बुझ गई किथों लियावा अग उच्ची थां ते चढ़ गया दास कई वारी अजमेर जो है सके मुसलमाना का दूजा मक्का है अजमेर शरीफ बड़ा सुंदर बनया होया है ओ जगह भी तकी जिथे फरीद ने उची चढ़ के पहाड़ी के उत्ते अग भी पाल की थी दूर वेखे अग का निशारा पे तुरन लगा ख्याल आया मना बारिश बड़ी जोर दी किस तरह पहुंचा तो फरीद ने उस वेले श्लोक उचारिया